0: यह था टॉप स्टोरी।
1: बेको समान के मवगे घातने के संबंध तवात सेककारों को अतरंगुट है। संविधानात्मक अपराध कारों को बना बेको समान नमेता के मवटे विरित बाग घातने के

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।